0: फी मनु तुनाई दशमा पहा अनु तुनाई दशमा हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सभी श्रीलंकीय हांडे
1: विलाव पर रे कोला हाय